0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
3: सत श्री अकाल, शुभ बादशाह, तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM कीप लिसनिंग

0: हाँ वे सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji.
3: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हां जी, मैं हूं एक और, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो? हां जी, 16748 AM बेबी।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ
2: यार तू इत नीचे आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: रेडियो हां जी 1674 AM।
1: विश्व पद्धर ते तेल दी काट सानू सब नु प्रभावित कर रही है। सरकार कोल एक राष्ट्रीय तेल सुरक्षा योजना है अते असी इस वेले दूजे पद्धर ते हां। अपनी कार दी काट अते वधेरे कुशलता नाल वरतों, ट्रक ड्राइवरां, किसानां अते जरूरी सेवावां लई तेल बचाउण विच मदद करदी है। हर छोटी कोशिश मददगार है। fuelplan.gov.au/punjabi ते जाओ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨਬਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ।
2: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
3: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
2: ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 Old G Long Road, Hoppers Crossing, वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
7: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
6: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
7: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
6: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
7: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
8: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
0: रेडियो हांजी 16748।

0: Yeah, Monty and Cotton DJ at the floor. Come on, buddy. आज मैंने लग रहा है अपना शो काटा था डीजे से आता
1: मेरे गाने बड़े बढ़िया ला पर
0: बोलने क्या है यार तर याद
1: नजारे लो नजारे
0: नजारे
1: लो
0: चको चको।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी
1: रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर स्टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

तू लाई लग गए। तेनू कोई कहिंदा कि तेरे दुख बड़े वड्डे ने, तेरे दुखां दा कोई हल नहीं, इन्हां दुखां करके तेरी जिंदगी खराब होगी, इन्हां दुखां करके तू उजड़ जाना, ते तू मन के बह गया। तू कदी लत्तां सिद्धियां करके वेखियां नहीं, तेनू पता ही नहीं है दुनिया के उत्ते दुख होर किड़े किड़े ने, किनू किनू ने। तेनू लगता है कि तू दुनिया के उत्ते कल्ला ही दुखी है, ते तेरे दुख सब तो वड्डे ने, ते तेरा दुख भी असल दे विच इह आ जो तू दस रहा वह तेरा दुख नहीं है। बिल्कुल उस तरह जिदा डुबना तेरा दुख नहीं है। दुख ये कि तेनू जानकारी नहीं सी, ते जे जानकारी नहीं सी ते तू हिम्मत भी नहीं की जानन दी कि पानी इत्थे किन्ना कडूंगा। मेरे समझाउण दा तरीका तेनू अजीब लग सकता, पर तेरी समस्या सिर्फ इन्नी क्या, तेरे नालों वड्डे दुख तां इत्थे तेरे आस पास उड़दे फिरदे जानवरां दे ने, तुरे फिरदे जानवरां दे ने, उड़दे फिरदे पंछियां दे ने। तेरे तो वड्डे दुख तां आ नदी दे किनारे रुख दे ने, पता नहीं किहड़े वेले खुरके विच डिग पैणा फिर भी हरिया। जिन्ना चिर तक एक भी जाड़े की मिट्टी दे विच लगी है फिर भी ये पंछियां नूं रहण बसेरा दे रहा, फिर भी लोकां नूं छां दे रहा। तेरे वांगू दिल छड़ के ते नहीं बैठा, तेरी कल्ले दी नहीं, शायद दुनिया के बहुते लोगों की यह समस्या। आपां सारे मन दे विच एक कहानी बना के उन्हूं सच मन के इस तरह जिंदगी खराब करते रहने, सच जानन की कभी कोशिश ही नहीं करते। मैं भी जानता हूँ तेरे मन च यह चल रहा होगा कि मैं लाई लग नहीं, मैं किसी की सुनी सुनाई तो नहीं यकीन करता, तो वह भी जवाब तेनों दे देना। किसी की सुनी सुनाई तो भावें नहीं, पर अपने मन की सुनी सुनाई तो जरूर यकीन करता। इस वेले भी जो तेरा मन कह रहा तू वो ते यकीन कर रहा, जो मैं बोल रहा वो तेनों झूठ लग रहा, क्योंकि तू मन ही मन मैनू मूर्ख समझ बैठा। तू अपने मन दे विच ये गल पक्की कर चुका है कि यह मूर्ख बंदा। असल दे विच जो तू मेरे कोल आया सी उदों ही तू ये चीज़ मन के आया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तेनों दस्या है ये बंदा मूर्ख है, उहदे कोल जाना बेहतर नहीं। तू मेरे कोल अपने दुखां दा हल नहीं लैण आया, तू अपनी ईगो नूं पट्ठे पाउणा आ, तू अपनी दलेरी साबित करना आ कि बाकी उन्हें दलेर नहीं सी, बाकियां नूं तुसीं डरा लिया होगा। मैं डरन वाला नहीं, मैं जरूर जाऊँगा, तू इस करके मेरे कोल आया, तू दुखां दा हल नहीं सी लभण आया, क्योंकि दुख तां तैनूं है ही नहीं। आस करते हैं कि इस कहानी दे विच्चों कितना किते अपना आप तुहानू जरूर दिखाया होगा। जे तुसीं भी किसी तरह की कोई अपने मन की सुनते हो, लोगों की सुनते हो कोई कहानी, बिना सच जाने अपने मन दे विच तय करके तुरदे हो, ते तुहाडे दुखां दा उही कारण है। कई बार साडे नाल कुछ इदां दा होया हुंदा, उस चीज़ नूं आपां हमेशा दे लई पल्ले बन्न लैंदे हां। खैर होए बीते तो सानू सीखना चाहिए, पर यह जरूरी नहीं कि वह गल्लां आपां मन दे विच गंढ मार लईए। जिदा कोई किसी दे नाल वरत्या, जरूरी नहीं कि तुहाडे नाल भी उदां वरतूगा। जिदा तुहाडे नाल कल होया सी, जरूरी नहीं कि अज भी उदां ही होगा। हो सकदा अज जिहदे नाल तुहाडा वाह वास्ता पैणा उहदा अज मूड ठीक होवे, हो सकदा अज तुहानू काम किसी होर तरीके का होवे, हो सकदा पहला भी मन दे विच बैठा होवे, पहला भी मन दे विच सोच चुका होवे कि कल उहने तुहाडे नाल गलत कीता सी, अज मैं उहदा सुधार करना। पर तुसीं मन ही मन एक कहानी लै के जदों गां जाओगे, गां वधोगे, तो वह सच कदी जान ही नहीं पाओगे।
ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਣ ਜੋਗਾ ਜਾਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦਾ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. You are listening.
1: Hanji Hanji, Hanji Hanji, Hanji Hanji, Radio Hanji.
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Hanji.
2: Stay tuned.
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: अक्षरा जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: पुछदाई नहीं।
1: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो।
3: सत श्री अकाल शुभ बोए बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।
1: सिंगर

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो।

0: क्या ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: गौड़ी सुखनी महला पंजवा सुखनी सुख अमृत प्रभ नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एक है नाम चबत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सुधाखर कीने राम नाम एक अखर
1: जिनकै जीव सावे ताकि महिमा गनी न आवे
0: कांखी एक है दर्श तुहारो नानक गुण संग मोहे उधारो
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभु कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभु सिमरत काछ बिघन लागै प्रभु कै सिमरन आनंद न जागै
1: प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभु कै सिमरन सार कै संग सर्व निधान नानक हर अंग
1: प्रभु कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभु कै सिमरन जपता पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला
1: सिमरै जिने आप सिमराय नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभु कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभु कै सिमरन तिसना बुझै प्रभु कै सिमरन सब ते सूझै
0: प्रभु कै सिमरन नाहीं जम तरसा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभु कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभु को सिमरै सी धनवंते प्रभु को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभु को सिमरै सी जन परवान प्रभु को सिमरै सी

0: गुणवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान
1: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया
0: जा नामन कहे सुआओ जन कह संचित आवे नाओ
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार
0: सुखमनी सुख अमृत पवनाम भगत जना के मन विश्राम 823 श्लोक
1: पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे
1: सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद
0: आस नित्या गो तरंग संत जना की दूर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरहो
0: हर तन की भर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साल के बचन अमोलीक लाल एह रतन
1: संत कमावत हो तो दार आप तरह लोक कह निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहद वाजे सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे
0: प्रगटे गोपाल महत के माथे नानक उतरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन शरण आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए
0: मिट गए बैर पे सबरेन अमृत नाम साध संगलैन
1: सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव
0: आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुरस न कहते
1: कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभि खेप हमारी
0: तब की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान
0: हर दिन खाट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग पव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बीता समदर्शी एक दृष्टि
1: ते फल तिस जन कै मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने
0: इहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी
0: सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भक्त कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जन ते छुटै
0: जा कै मस्तक क्रम प्रपाए साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभु चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उधारै
1: निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से वै परम साध नाम निर्मलता के करम
1: सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम पत जना कै मन विश्राम 824 श्लोक

अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना करना देन ना अंत अंत ना वेखण सुन ना अंत अंत ना जापै क्या मनमंत्र।

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Namaskar, and once again a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. इतना लंबा हमने सफर तय कर लिया, अब ऐसा लगता है कि जैसे एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं. और कितने सारे वो रहस्य सामने आते जा रहे हैं जो रहस्य लगते थे, लेकिन सच कितना सहज है. अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा की पहचान, और फिर जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय की पहचान. लेकिन अभी भी कुछ और बातें हैं जो कहीं ना कहीं छुपी हैं, जिनका रहस्य जो है उन रहस्य से पर्दा हटना जरूरी है. तो चलिए आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और हर बार की तरह इस पूरे सफर में हमें जितने भी रहस्य हैं उनसे दूर ले जाने के लिए, पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: आपने बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम

0: सोल लेवल पर या ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा, उससे पहले एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं कि जिस समय में हम रह रहे हैं कहाँ से होते हुए आए हैं।
1: हमने सबसे पहले यही देखा कि टाइम मूव्स इन अ साइक्लिक मैनर, यू नो, टिल नाउ देयर वाज अ लिटिल कंफ्यूजन अबाउट ये सृष्टि कब शुरू हुई, अबाउट द क्रिएशन, और जहां क्रिएशन की बात आती तो फिर अब ये बात आने लग गई कि डिस्ट्रक्शन कब होने वाली है इसकी, यू नो, बिकॉज जो चीज क्रिएट होगी तो फिर वो एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय भी होगी। एंड राइट नाउ वी आर सीइंग द वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन, यू नो, एवरीवेयर, एंड उसकी वजह से एक भय, यू नो, एक इनसिक्योरिटी कि आखिर आने वाला समय कहाँ हमें लेकर जा रहा है। और अब तो पर्यावरण की वजह से कहीं ना कहीं, और न्यूक्लियर वेपन्स जो सारे रेडी हैं, और जो बहुत सारे प्रोफेसीज हो चुकी हैं, यू नो, बहुत सारी प्रेडिक्शंस की गई है।
0: नास्टराडामस की अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो लोग तो इतने डरे हुए हैं कि अब होने वाला है।
1: यस, सो एवरीवन इज लुकिंग एट द ईयर नाउ, नाउ इट्स बिकम ईयर स्पेसिफिक, यू नो, पहले था कि ये हो सकता है या ये होगा शायद, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि किस वर्ष में, एंड वो वर्ष भी जो आया है वो बहुत नजदीक लग रहा है कि 2010 2011, तो नाउ वी हैव रियलाइज दैट इट इज विद इन आवर लाइफ टाइम। पहले लग रहा था कि हाँ सृष्टि को कुछ होने वाला है,
0: चलो जब होगा तब देखा जाएगा,
1: जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अब ये लगता है कि अपने ही इस लाइफ टाइम में होगा। तो समवेयर, इवन दो आई डोंट नो हाउ मच वी पे अटेंशन टू इट, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीच बीच में वो डाउट आ जाता है, बट फिर हम उसको फिर इग्नोर कर देते हैं। सब कुछ पता होते हुए भी कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और ये लगता है कि जब होगा तो सारी दुनिया पर होगा। अभी तक हम अगर सुन भी रहे थे इन्फॉर्मेशन को तो हम एक नेगेटिव नोट पर सुन रहे थे कि हाँ ये सब होने वाला है, हाय क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। बट नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज साइक्लिक, तो फिर रात को डर नहीं लगता। हाँ होता है कि अंधेरा है तो कहीं ना कहीं हम ठोकर खाते हैं, लेकिन हम निराश होकर नहीं बैठ जाते कि दिस इज द एंड, हमें क्योंकि ये पता होता है कि रात के बाद सुबह होनी है।
0: इनफैक्ट एक और बात यहाँ जी जोड़ूंगी कि रात में भी रोशनी करने की टेक्निक हमने सीख ली।
1: यस, एब्सोल्युटली, ताकि वो रात भी उतनी तकलीफ नहीं देगी अगर हमें उसमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना आ जाए। एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, बिकॉज वी नो कि नाउ इट्स ओनली अ साइन दैट द मॉर्निंग इज हियर। बस एक थोड़ा सा पीरियड जैसा बीच में है, लेकिन व्हाट अबाउट दैट ब्यूटिफुल मॉर्निंग व्हिच इज टू कम। जब हमें ये समझ में आया कि टाइम इज साइक्लिक, वी अंडरस्टूड दैट सोल, मैटर एंड गॉड इज एनर्जी, तो एनर्जी पे फिर कुछ लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट लॉ था कि इट कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, तो energy is constant, तो इसलिए जितनी number of souls है वो fixed है, उसमें ना कोई addition है ना कोई subtraction है। and the other is energy moves from an ordered state, वो पहले एक ordered state में है, जब वो movement या action में आती है तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो ordered state से chaotic stage में आ जाती है, and then another external source of energy intervenes। जो उस क्लोज्ड सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरवीन करती है, एंड दैट रीचार्जेस और रीकिंडल्स दिस सिस्टम ऑफ एनर्जी, एंड इट मूव्स फ्रॉम अ कैओटिक स्टेज अगेन टू एन ऑर्डर्ड स्टेज। तो द सोल एनर्जी अपनी हाईएस्ट स्टेज पे थी, धीरे धीरे धीरे कर्म में आते आते आते इट मूव्स टू इट्स लोएस्ट स्टेज, फिनिश नहीं होती, लेकिन वो लोएस्ट स्टेज वो है जब वो हायर पावर को, जिसको हम परमात्मा, निराकार, शिव बाबा कहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी, ही इंटरवीन्स इनटू दिस क्लोज सिस्टम एंड द सोल गेट्स चार्ज्ड अगेन, एंड सो दिस साइकिल विल गो ऑन, कि द सोल विल बी इट्स हाईएस्ट स्टेज, मूव, कम टू इट्स लोएस्ट स्टेज, अगेन गो बैक टू इट्स हाईएस्ट स्टेज। तो हमें समझ में आता है कि थिंग्स आर मूविंग इन अ साइकिल। तो जैसे दिन का साइकिल, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सिमिलरली ऑन अ बिगर लेवल नाउ, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, या हम कहें गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड देन आयरन एज। तो अब आयरन एज में हम आकर पहुंचे। कलयुग ये शब्द तो बच्चे बच्चे के मुंह पर है, कलयुग है आजकल हम कहते हैं, घोर कलयुग है। जैसे आपने कहा कि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है और घोर कलयुग है, इसलिए हम धक्के खा रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं, दुख अशांति बढ़ गई है। लेकिन अब जब हमें ये पता चलता है कि ये कलयुग के बाद फिर
0: So there is that hope, you know.
1: It's not a hope, it's a reality. So it's just that we prepare for that reality. अगर हमें रात के बाद सुबह नहीं है ये ना पता हो तो हमारी रात कैसे बीतेगी? It will feel कि oh my life will be like this, you know. But हमें पता है कि रात के बाद सुबह है, तो हम लोग उस रात को बहुत स्मूथली क्रॉस कर लेते हैं और सुबह की अपनी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन सुबह की तैयारी हम करते हैं ना वो ग्लोबल लेवल, सुबह आने वाली है, अब हमें उसकी क्या तैयारी करनी है?
0: वंडरफुल। एक्चुअली यू नो माइंडसेट चेंज करने की बात है सबसे पहले, ये कहने के बजाय कि सब कुछ खत्म होने वाला है या घोर कलयुग है, वी हैव टू से आवरसेल्फ सुबह आने वाली है। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस।
1: इट कांट गो ऑन इन एनी वेज इफ यू लुक एट इट एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, इट जस्ट कांट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर एवर। कब तक कब तक ये चल सकता है? कहीं ना कहीं तो एक जंप आएगा ही, कहीं ना कहीं तो वो परिवर्तन आएगा। तो जब हम सत्युग में थे या गोल्डन एज में थे तो सोल वॉज एब्सोल्युटली फुल, क्योंकि वो अपने घर से मैं आत्मा आई, तो मैं आत्मा 100% प्योर, तो दैट इज दैट पोटेंशियल स्टेट, बिल्कुल फुल, हाइएस्ट एनर्जी, सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल, जो चीज आज एक क्षण के लिए भी याद नहीं रहती है कि मैं आत्मा हूं, वो उस समय में 100% नेचुरल थी। जैसे आज मैं शरीर हूं, ये 100% नेचुरल लगता है, एफर्ट नहीं करना पड़ता कि मैं ये हूं। उस टाइम मैं आत्मा हूं, इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता था, इट वॉज नेचुरल कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूं। लेकिन फिर कर्म करते गए, एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, दैट हाइएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मूव्ड फ्रॉम एन ऑर्डर्ड स्टेट स्लोली, बट इट वॉज अ स्लो प्रोसेस, इट वॉज अ स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल, एंड वी हैव एंजॉयड दैट जर्नी, वी हैव। जो आज कई बार लोग पूछते हैं कि फिर ये सृष्टि बनी क्यों, यू नो इतना दुख है, इतनी अशांति है, लेकिन कितना समय,
0: अशांति तो अब आई है, ये
1: अब आई है। ऐसे तो हम कोई भी कर्म करने जाते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हम थक जाते हैं, हम कोई गेम भी खेलते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम वी गेट टायर्ड, बट वी एक्सेप्ट दैट, हम समझ लेते हैं कि 4 घंटे अगर खेलेंगे तो आखिरी के 15-20 मिनट तो थक जाएंगे, और फिर जब थक जाते हैं फिर हम रेस्ट करते हैं और फिर हम अगले दिन गेम फिर खेलते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ उस 15 मिनट को देखें कि ओ ये गेम खेलने से तो थकेंगे, तो विल वी स्टॉप प्लेइंग द गेम?
0: नो वी विल नॉट।
1: 3 hours 45 minutes वॉज गुड गेम, 15 minutes पेन, कैन गिव अप द गेम,
0: बट इट पेन इज एक्चुअली दोस 15 minutes, सो दैट्स द पेन वी आर फीलिंग नाउ,
1: दैट्स द पेन, एंड व्हाई आर वी फीलिंग दैट पेन, बिकॉज नाउ वी आर टायर्ड, यू नो The soul has really reached its stage where हमें ये याद ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, तो वो एनर्जी लेवल बिल्कुल जैसे फिनिश नहीं, लेकिन इट्स रीच्ड इट्स लोएस्ट पॉइंट। लेकिन नाउ वी हैव द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज द हाइएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी परमात्मा हैज इंटरवीन्ड इनटू द सिस्टम, सो ऑल दैट आई हैव टू डू इज नाउ
0: कनेक्ट
1: टू हिम, एंड आई विल अगेन मूव फ्रॉम द chaotic स्टेज to the ordered stage.
0: Okay, before we get into that, how things will transform, how I'll transform, is like, I want to ask you a question. ये जो हम पूरे चार युगों की बात करते आ रहे हैं, ये कई बार हो चुके हैं, that's what the question is, you know.
1: Cycle.
0: तो इसका मतलब कई बार हम
1: जैसे सुबह दोपहर शाम रात कई बार हो चुकी है,
0: कई दिनों में हो चुके, कई बार हो चुके,
1: कई बार हो चुके हैं, आप गिनती कर सकते हैं कितनी बार हुई है, साइकिल है। तो अगेन अगर वो लीनियर होता तब आप कह सकते थे ये कब शुरू हुआ था, और अगर कभी शुरू हुआ था तो फिर फिनिश भी होगा, लेकिन साइकिल।
0: तो हम कई बार ये गेम खेलते आ रहे हैं,
1: एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी, क्योंकि कोई चीज अगर आपने कई बार की है देन
0: आपको पता है कि आगे भी क्या,
1: इट्स वेरी इजी। सी जब हमें शिव बाबा आकर ये ज्ञान देते हैं तो हम आत्माएं उस समय बिल्कुल कमजोर होती है, एकदम थकी हुई जैसे, यू नो टायर्ड एट द एंड ऑफ द गेम, एंड परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि हे आत्मा तुम 100% प्योर थे, यू नो तुम्हें अब फिर से 100% सोल कॉन्शियस बनना है, very difficult it seems. Very very difficult. In the present scenario, how is it possible कि एकदम 100% body consciousness से 100% soul consciousness पे जाना है, एक ऐसी स्थिति तक पहुंचना है जब you know peace and purity and love is your natural. पहली बार सुनने में it sounds very difficult. लेकिन जब हमें समय का ज्ञान मिलता है उससे सारा perception change हो जाता है. क्यों? आप आत्मा ही वैसे थे. आप थे 100% प्योर. आप वो 100% प्योरिटी से अब एकदम इम्प्योर वाले लेवल पर आए, लेकिन थे आप. और फिर आप इस इम्प्योरिटी के लेवल से फिर से प्योरिटी के लेवल पे
0: और
1: जाएंगे.
0: आप ही जाओगे, कोई
1: आप
0: और
1: ही जाओगे. और आपने ये जंप पहले भी किया है क्योंकि ये साइकिल पहले भी घूमा है. तो आप थे, आपने पहले भी ये किया है. जो चीज आपने इतनी बार की है वो अब आप एक बार फिर करने वाले हो, देन इट बिकम्स मच मच इजियर. यू रियलाइज आई वॉज दैट, यू नो somebody हैज टू मोटिवेट दिल से, यू हैव डन इट बिफोर सो नाउ यू कैन डू इट अगेन. बट इफ somebody asks मी टू डू समथिंग विच आईव नेवर डन बिफोर, इट विल बी लिटिल चैलेंजिंग. बट इफ आईव डन इट सो मेनी टाइम्स बिफोर, देन इट्स सिंपल. तो इसलिए समय को पहचानने से सब कुछ बहुत सिंपल होने लगता है. क्योंकि मैं थी क्लीन, मैं गंदी हो गई हूँ, मुझे फिर से क्लीन होना है. बट आई वॉज क्लीन.
0: कई बार ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ. मैंने ये देखा हुआ है पहली बार. इनफैक्ट बहुत से हमारे ऑडियंस, हमारे पास इस तरह की अगर हम किताबें भी उठाकर देखें तो बहुत से लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं कि ये सिचुएशन मैंने पहले देखी हुई है, ये मेरे साथ हो चुका है, ये जगह पे मैं आया हुआ हूँ.
1: यस, ये मेजोरिटी मेरे को लगता है हम सबके साथ होता है. कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर सीन में होते हैं, एक दृश्य में होते हैं और हमें लगता है ऐसे के ऐसे मैंने इस दृश्य को पहले देखा है, यही के यही लोग थे, यही का यही बिल्कुल ऐसा हो रहा था. बट इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सीन. तो ये व्हाट इज दिस? अगर वो सीन पहले कभी हुआ ही नहीं है तो हाउ कैन आई फील कि मैंने वो देखा है? लेकिन अब हमें समझ में आता है बिकॉज द साइकिल इज अ रेपिटेशन, इट इज मूविंग एंड मूव्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो जो सीन आज हमारे साथ हो रहा है ये पहले भी
0: हो चुका है.
1: जो हो चुका है वो यहाँ स्टोर्ड है. और इसीलिए जो चीज यहाँ स्टोर्ड है जब वो फिर से होती है और अगर वो हम क्लैरिटी से अपनी पास्ट मेमोरी को ले तो हमें लगता है हाँ यही का यही सीन हो चुका है. कई बार हम कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि आज ये होने वाला है. यू नो इंट्यूशन. इंट्यूशन भी कैसे होता है? इंट्यूशन के पीछे भी यही लॉजिक है क्योंकि आज जो होने वाला है वो पहले हो चुका है बिकॉज इट्स अ साइकिल. तो इंट्यूशन भी इसी पर आधारित है क्योंकि आज जो मेरा कल जो मेरा फ्यूचर है, इट्स आई एम एट दिस पॉइंट इन द साइकिल एंड दिस पॉइंट इज माय फ्यूचर, इट्स माय टुमारो. बट इफ आई लुक एट इट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द साइकिल देन दिस पॉइंट इज ऑल्सो माय पास्ट.
0: ओके,
1: सी लुक एट इट ऑन अ साइकिल. हियर आई एम टुडे, दिस इज माय टुमारो. But then if I look at it from here, this is my yesterday. So that's why, because it's my yesterday, तो yesterday तो याद है.
0: It's somewhere there in my mind.
1: यहाँ है. तो जितना जितना mind को silent करते जाएंगे, तो वो yesterday याद आता जाएगा. और जितना yesterday याद आएगा, tomorrow पता लगता जाएगा.
0: Now the time is कि we have to become proactive.
1: Absolutely. Because अब हमें बहुत कुछ करना है. Now is not the time कि we can just sit back and say कि जो होना है वो. क्योंकि बाहर का परिवर्तन जितनी तीव्र गति से होगा उससे ज्यादा तीव्र गति से हमें अपना आंतरिक परिवर्तन चाहिए. क्योंकि chaos बाहर बढ़ेगा, you know, ordered to chaotic stage. तो जो बाह्य चीजें हैं वो अभी तक ऑर्डर से क्योटिक स्टेज में जा रहे हैं और अभी भी और क्योटिक स्टेज में जाने वाले हैं. जो ग्लोबल वार्मिंग की हमने बात की या न्यूक्लियर वट एवर एवरीथिंग, तो वो जो क्योटिक स्टेज है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है. वी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दैट राइट नाउ. द इनर स्टेज, क्योंकि जब इनर स्टेज केओटिक स्टेज से ऑर्डर्ड स्टेज में आएगी तब बाहर वाली स्थिति
0: चेंज हो जाएगी,
1: फिर से ऑर्डर्ड स्टेज में आएगी. लेकिन पहले जिम्मेवारी आत्मा पर.
0: क्योंकि अगर हम अपनी जर्नी भी देखें तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी या केओटिक स्टेज में हम इंटरनली आए थे बेसिकली, यू नो
1: वो पर्यावरण. हाँ, एकदम अच्छा था. तो सारा कुछ पहले आत्मा में होता है, फिर उसका प्रभाव प्रकृति पर होता है। आत्मा प्योर, प्रकृति प्योर। आत्मा धीरे धीरे इम्प्योर होती गई, उसके फलस्वरूप धीरे धीरे प्रकृति इम्प्योर हो गई। अब अगर आत्मा वेट करे कि जब बाहर सब ठीक हो जाएगा तब मैं ठीक हो जाऊं, इट विल नॉट हैपन। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हम पर है कि मुझे अब फिर से वो 100% प्योरिटी पे जाना है, प्रकृति फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए अभी का जो समय है, वी आर एट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन द वर्ल्ड साइकिल, क्योंकि अभी तक जो था बैटरी डिस्चार्ज होने का समय था, नेचुरल है, उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। बैटरी चार्ज हुई हुई थी, यूज किया, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गई, लेकिन डिस्चार्ज से चार्ज
0: उसमें टाइम लगता है, और जब लास्ट
1: टाइम नहीं, उसमें थोड़ा सा एफर्ट
0: भी करना पड़ता है, और जब लास्ट से एंड खत्म होती है तो एकदम से होती है।
1: हाँ, बिकॉज इसीलिए हमें पता चल रहा है कि अभी जो डिक्लाइन है ऑन मॉरल, सोशल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल, दैट डिक्लाइन इज वेरी वेरी फास्ट। यू नो, मोबाइल भी चार्ज करके चलते हैं तो सारा दिन धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, लेकिन एंड की दो लाइन्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो अभी हम वो ही समय पर पहुंच रहे हैं जो डिक्लाइन बहुत फास्ट होगा, तो इसलिए वो फिनिश तो होगा नहीं, लेकिन उससे पहले अपने आप को फिर से चार्ज करना पड़ेगा। और चार्ज से डिस्चार्ज हम अपने आप हो गए थे, इसलिए परमात्मा का उसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन अब डिस्चार्ज से चार्ज, वो जो एक जंप है, ये बहुत हाई जंप है, और ये हम आत्मा अपने आप नहीं कर सकती है। एंड तब परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है, एंड ये अब का जो समय है जब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, कनेक्शन होता है, या हम कहें आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है, और इसीलिए इस समय को हम संगम युग कहते हैं। अब हम कलयुग में वैसे तो हैं, जब तक हमें अपना और परमात्मा का परिचय नहीं, लेकिन जब हमें वो परिचय मिल गया, कनेक्शन जुड़ गया, अब हमारी जीवन कलयुग वाली नहीं, अब हम वो संगम के समय पर हैं। तो दिस पीरियड इज कॉल्ड द कॉन्फ्लुएंस एज, संगम। किसका संगम? आत्मा और परमात्मा का संगम,
0: स्ट्रेंथन्ड एक्चुअली।
1: यस, एंड दैट्स व्हाई दिस एज इज कॉल्ड द डायमंड एज, क्योंकि दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एज ऑफ द होल साइकिल, क्योंकि आत्मा का अपने पिता के साथ संगम है इस समय। सारे साइकिल में तो हम डिस्चार्ज होते आए, नो बिग डील, नेचुरल, लेकिन जब चार्ज होने का समय है, दैट इज अ बिग जंप फॉर द सोल। तो दिस एज इज द डायमंड एज। तो हम सब आत्माएं अभी एक मोस्ट ब्यूटिफुल पीरियड से गुजर रहे हैं ऑलरेडी। जो आने वाला समय है वो तो सुंदर है ही है, दैट इज द गोल्डन एज, लेकिन अभी जो समय चल रहा है जहां आत्मा अपने पिता से फिर संबंध जोड़ती है, ये संगम युग है।
0: मोस्ट एक्साइटिंग
1: वेर यू कैन सी See what is the difference between golden age and now? Golden age में सब कुछ ही अच्छा है, you know? तो आपको अच्छाई का भी एक्सपीरियंस कब होता है? जब आपने अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को साथ साथ देखा हो। सत्युग में आप हमें फील भी नहीं होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बिकॉज होगा ही अच्छा,
0: नेचुरल,
1: इट विल बी नेचुरल। सुख क्या होता है वो हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुख क्या होता है उसकी अनुभूति नहीं है। लेकिन अभी का जो समय है, जहां अभी हमारा जीवन दुखी है, अशांत है, परेशान है, और इसमें परमात्मा से संबंध जोड़ के हम उसी कलयुगी समय में रहते हुए, जहां चारों तरफ त्राही है, अगर हम अपने जीवन को वो सुखी, पवित्र और शांत स्वरूप बना सकते हैं, तब वो जीवन कैसे होगी?
0: एंड
1: दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल पीरियड। इट्स दैट्स व्हाई यू नो वी आर नॉट वेटिंग फॉर सत्युग टू कम, नो वी आर नॉट, बिकॉज दिस पीरियड इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट, बिकॉज माई लाइफ बिकम्स सो ब्यूटिफुल राइट नाउ। तो ये वो संगम युग है, कलयुग से सत्युग, इन दोनों का भी संगम है अभी, और आत्मा और परमात्मा का भी संगम है। सो दिस इज द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो घड़ी जो अब है वो बस 12 बजने को कुछ ही मिनट पर, कुछ ही मिनट भी नहीं कहेंगे अब तो, आकर पहुंची है, एंड इट हैज जस्ट टू मूव, एंड द साइकिल हैज टू बिगिन ऑल ओवर अगेन। तो दिस इज दैट पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां from 100%, not 100%, but very impure, we will jump to a stage of 100% pure. और उसको करने का तरीका कैसे होगा?
0: What I can feel is a meditation.
1: Yeah.
0: The way I link, because that, see, if we look at, मुझे लगता भी है कि सारे दर्शक जो हमारे देख भी रहे हैं प्रोग्राम, हमारे इस परिवार का हिस्सा है कि अब दिन का सबसे खूबसूरत वक्त वो हो गया है जब हम वो मेडिटेशन में बैठे होते हैं. यू नो इट हैज मे बी इट्स 10 मिनट्स, मे बी इट्स 15 मिनट्स, मे बी इट्स हाफ एन आवर, बट दैट्स अ पीरियड यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू. एंड इफ यू मिस इट यू डोंट लाइक इट, यू वॉन्ट इट टू बी देयर.
1: तो अभी के ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में दो चीजें होंगी. मेडिटेशन, मेडिटेशन से क्या होगा कि आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है दे विल री इमर्ज. वो कॉन्शियसनेस फिर से आती जाएगी और वो कॉन्शियसनेस जो अब आएगी वो ही हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देगी. सत्युग में जाने के लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए? यू नो जो हम सोल कॉन्शियसनेस, बिकॉज द सोल ओवर देयर वॉज इन 100% सोल कॉन्शियसनेस. अब परमात्मा आकर हमें वापस उस सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं. तो जहां वो कॉन्शियसनेस अभी हमने अपने अंदर जागृत की तो वही अवेयरनेस कि हम क्या थे वो फिर से जागृत होने लगेगी. पीस, प्योरिटी, लव, पावर जो कि हमारी ओरिजिनल संस्कार थे, लेकिन इतने सब युगों के बाद वो स्टैक जो था संस्कार का, तो ये सारे संस्कार एकदम नीचे चले गए थे स्टैक में. तो मेडिटेशन क्या करेगा? नीचे से इनको एकदम ऊपर के लेयर में ले आ जाएगा और हमें वो अवस्था में ले आएगा जो हम थे और जो अब हम बनेंगे घर जाने से पहले. क्योंकि द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी क्वाइट केओटिक आउटसाइड, यू नो द आउटसाइड क्लीनिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? एक तरफ पुराना घर टूटता है और दूसरी तरफ नया घर बनता है. तो एक तरफ कलयुग का परिवर्तन होगा, सृष्टि का परिवर्तन होगा. जो हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग, स्नो मेल्टिंग, वी से 20 feet द सी लेवल विल राइज, ऑल दिस विल हैपन.
0: प्रलय की बात की जाती थी.
1: तो ऑल दिस विल हैपन बिकॉज ये सारे ही तो विधि है जिससे सृष्टि की सफाई होगी. यू नो पर्यावरण की सफाई होनी है, सत्योगी दुनिया कैसी होगी? एनवायरमेंट विल बी 100% प्योर. तो वो कब होगा? जब ये सफाई होगी. तो वी विल गो थ्रू दैट लिटिल क्रिटिकल पीरियड, लेकिन जो अंदर से स्टेबल होंगे उनके लिए वो पीरियड भी कब आकर निकल जाएगा उन्हें पता भी नहीं चलेगा.
0: आई थिंक वो ऑलरेडी चार्ज्ड और ऑलरेडी उस अवेयरनेस में रहने शुरू.
1: एब्सोल्युटली. तो इसलिए इंटरनली हम अपने आप को उतना पावरफुल, उतना प्योर बनाएंगे. दो काम हम अभी कर रहे हैं. एक, अपने ओरिजिनल संस्कार को फिर से री इमर्ज कर रहे हैं और ये ओरिजिनल संस्कार मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार होंगे जिनको लेकर मैं अपने घर जाऊंगी परमधाम और फिर से वो साइकिल के बिगिनिंग में फिर आ जाऊंगी. एंड दूसरा, जितने मैंने पीछे कॉपर एज से बहुत सारे जो विक्रम किए हैं जिसका हिसाब किताब हमें अभी चुक तो करना पड़ता है, तो वो भी हम योग से चुक तो करते हैं. जैसे कार्मिक फिलोसफी की जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि इज देयर नो वे कि हम इसको सेटल कर सके. तो जितना अभी डिक्लाइन हो रहा है तो हमें भोगना की फीलिंग ज्यादा आ रही है ना, सफरिंग हैज इंक्रीज्ड. तो ये सफरिंग को कम करने का दो ही तरीका है, कम या फिनिश करना है हमें, या तो भोग के या योग से. और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सब आत्माओं को अपने घर जाना है और सब आत्माओं को सारा ये अकाउंट जो यहाँ क्रिएट किया था वो सेटल करके जाना है, प्योरिफाई होकर जाना है. तो प्योरिफाई होने का दो तरीका है, या तो भोग के, जिसको हम कहते हैं सजा भोग के, जिसका आज दिन तक हम सुनते थे कि ऊपर जाएंगे तो सजा मिलेगी. तो सजा कहीं ऊपर नहीं, वो सारी सजाएं हमें यही मिलती हैं. हर पल जब हम दुखी होते हैं उससे बड़ी सजा और कोई नहीं होती है. दर्द में होते हैं वो ही हमारी सजा है. तो वो सारा जो अकाउंट हमें सेटल करना है, या तो दुख दर्द यहाँ भोग के या फिर योग से. तो जितना हम योग करेंगे अभी परमात्मा से वो कनेक्शन जोड़ेंगे, पुराना हिसाब किताब चुक तो करते जाएंगे, ओरिजिनल संस्कार्स इमर्ज करते जाएंगे, उतना दुख और दर्द की फीलिंग
0: कम
1: होती जाएगी. एंड जितना आपकी सफरिंग कम होती गई मतलब उतने आपके अकाउंट्स
0: सेटल
1: होते गए. क्योंकि जितना टाइम क्रिटिकल और आता जाएगा सफरिंग और भी बढ़ती जाएगी। तो जितना हम अपनी तैयारी अभी कर लेते हैं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस बिगिन करते हैं, तो बाहर सफाई चल रही होगी लेकिन अंदर की तैयारी
0: जो है वो पूरी
1: उससे पहले हो जाएगी। सो वी विल बी एबल टू क्रॉस दैट टाइम वेरी ब्यूटिफुली एंड इवन नाउ लाइफ विल बिकम वेरी वेरी स्टेबल एंड वेरी ब्यूटिफुल।
0: ये जो पूरी हमारी आज बातचीत रही ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले वक्त की तैयारी, सुबह की तैयारी हमें अभी करनी है, चाहे घोर कालिमा है लेकिन इसी रात में हम तैयारी कर सकते हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। मानते हैं कि क्योस है, मानते हैं कि त्राही त्राही मची है, लेकिन जैसे हमने अपने अंदर, हमने पहले भी ये बात की थी कि बदलाव अपने ही अंदर आएगा, अब जब हमने इस पूरे चक्र को समझ लिया है, काल चक्र जिसे कहा जाता है, समय का चक्र, समय की सच्चाई, तो फिर आने वाला जो स्वर्ण युग है, जो गोल्डन एरा है, वो इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी जो युग है वो भी बहुत सुंदर है क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा का वो मिलन हो रहा है जो किसी और युग में नहीं हुआ है। तो हम इस डायमंड युग को, इस संगम युग को भी एंजॉय कर सकते हैं, आने वाला जो भी क्योस सामने है उसकी तैयारी कर सकते हैं, और फिर उस स्वर्ण युग या गोल्डन एज की इमेजिनेशन कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जिसका जवाब आप तलाश रहे हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।
0: हमने स्वयं को भी पहचान लिया, सारी जानकारी हमें मिल गई है, समय चक्र भी पता चल गया, लेकिन परमात्मा जिनके बारे में हम ये कह रहे हैं कि शिव बाबा आ चुके हैं और स्वयं उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, उस युग में हमें लेकर जाएंगे, तो कहाँ है वो, उन्हें तलाशना भी बाकी है। तो अगली कड़ी में हम सीधा संपर्क जोड़ेंगे शिव बाबा से। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यू आर लिसनिंग रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। रेडियो हांजी, स्टे ट्यून्ड।
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना हांजी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हां जी 1674 AM।

This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए.

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: और क्यों एक मूड ते आके मैनू लगदा है कि तेरी होंद नू बयानण लई जिवें हमेशा ही कोई कसर बाकी रह जांदी है। मैं तैनू दुनिया दे नजारियां नाल मेल मेल के वेखण दी गलती कर बैठा, पर तू तां अपने आप विच मौलिक अलहदा ते कुदरत दी शाना दी सिरजना है।
1: रेडियो हां जी 1600

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: इजवाले बाबू मेरा गाना चला दो
3: सत श्री अकाल शुभोय बादशाह ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो हां जी
4: अच्छा सुनना एक गल दस सच्ची सच्ची दसेंगा

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।